पटक बैंक अफ द ईयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटिजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटिजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री।

फसी बेची पैसा आयो फिली मेरे बालकुनी में बसी ते बेला में गुंडा आयो रेखा थापा कराई राजे समलाउनी बेला कता हराई हराई।

0: gentlemen, may I have your attention, please? 3, 2, 1.
1: 89.6 विराट मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल अंतर्गत नेपालको नम्बर 1 कैंसर हॉस्पिटल विराट कैंसर इंस्टीट्यूट विराटनगर। थप जानकारी का लागि संपर्क नम्बर 97160025530।
2: यो मौसम अत्याधिक हावाहुरीको भएकाले बन्डडेलको जोखिम निस्कन सक्छ, त्यसकारण सतर्क रहनुहोस्।
3: तसर्थ वन क्षेत्रमा मानिसहरू हिँड्ने बाटोको दायाँ बायाँ रहेका पात पतिङ्गरहरू जस्ता सजिलै बल्न सक्ने पदार्थहरूलाई हटाई सफा राखौं।
4: वन क्षेत्रमा हिँड्दा चुरोट बिडीका ठुटाहरू जथाभावी नफालौं।
2: डडेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी बढाऊ।
3: जानी जानी डडेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाऊ।
2: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौ।
4: सुन्नुहोस् त,
3: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड, जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
5: वन डडेलो रोकौ, वन जंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गरौ।
2: अनुरोधक
6: समयथान सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति बुद्धभूमि नगरपालिका 3 कपिल वस्तु, अध्यक्ष धर्मराज गहिरे, सम्पर्क नम्बर 98472888185।
7: कता हो काका लखर लखर गर्दै?
8: कहाँ हुन्थ्यो बाबु, यो छोराले विदेशबाट पठाइदिएको एलईडी टिभी पनि बिग्रियो, इन्भर्टर पनि त्यस्तै छ, छोराले अमेरिकाबाट पठाइदिएको यो आइफोन के गर्दा भइमा खस्यो यो पनि त्यस्तै छ। त्यही भएर म त आज बिहानै उठेर हेर बाबु, यो 4 नम्बर जितपुरमा रहेको शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर एन्ड मोबाइल मर्मत सेन्टरमा गएर बनाएर लिएर साँझ चडक्क बुढाबुढी बसेर टिभी हेरौँला नातिले मोबाइलबाट फोन गर्ला बाउला भनेर बिहान बिहानै दौडेको छु।
7: मेरा पनि घरका सबै इलेक्ट्रोनिक सामानहरू बिग्रेर कामै नलाग्ने भएका छन्, कहाँ लाँदा ठिक हुन्छ होला?
8: ल होइन, सँगै जाम शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर तथा मोबाइल मर्मत केन्द्र 4 नम्बर जितपुरतिर।
7: हजुर, हाम्रा सेवाहरू,
8: हामी कहाँ सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिनुको साथै आइफोन, एन्ड्रोइड फोन, मोबाइल फोनहरू दक्ष प्राविधिकद्वारा चिप लेभल मर्मत सुविधा उपलब्ध रहेको जानकारी गराउँछौ, साथै नयाँ मोबाइल पनि पाइन्छ। अन्य विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क शैलेश्वरी इलेक्ट्रोनिक सर्भिस सेन्टर तथा मोबाइल मर्मत केन्द्र 4 नम्बर जितपुर कपिल वस्तु प्रोप्राइटर सञ्जय श्रेष्ठ एन्ड विजय श्रेष्ठ 98446 19125 र 98572500।
9: न डराओ बाबू, न डराओ, साँप का कुछ न करे तो साँप कुछ नहीं करत है। अच्छा वो देखो, वो आपन रास्ता चली गवा कुछ की तो, और सब सांप विशालु नहीं होत है ना?
10: विशालु हो कि नहीं, कैसा चिन्ह है अम्मा?
9: हाँ बाबू, नेपाल में मिले वाले विशालु सांप के बारे में सुनो। एक ठो होत है करेंट, जोन प्राय रात के समय में घर भीतर हल सकत है, एकरे दशक बाद नाही पिरा सकत है, लेकिन दशक बाद शरीर के भाग न चलेक मेर से सांस लिए कठिन हुए मेर से पक्षघात हो सकत है। और ऐसे होते हैं गोहुवन अर्थात फेटारा, जोन बहुत रिसहा मेर के होते हैं और फाड़ बनावत हैं। गोहुवन सांप दिन या रात दोनों ओकर दिखाते हैं, और प्राय सवेरे संध्या के दिखाए वाले एकरे दशक बाद पक्षघात हो सकत है।
10: अच्छा,
9: और दूसर होते हैं हरियो जात के सांप, एकरे दशक बाद दस लिहा भाग फूल जात है और बहुत पिरात है, खून पातर हो के रक्त श्राव हो सकत है। वही मेर से हमरन के देश की तराई के सब भूभाग में मिले वाले गंडाइस जौने के ऊपर बाघ के जिस बुट्टा होत है, इकरे दसाई के बीमारियां कमे मात्रा में मिलत है, लेकिन एकर दसाई एकदम खतरनाक होत है।
11: बरसायाम और बाली काटे समय में सांप के कटाई अथवा दसाई के घटना सब बहुत होत है। बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोप सब के कारण सांप के वासस्थान नष्ट होत के सांप दसाई के घटना सब अधिक होत मिलत है।
12: ढेर जैसे सांप के दसाई हानिकारक नहीं होते, तब वो सांप दसिन लीज तो तुरंत निर्वय के उपचार केंद्र में चल जाए।
11: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नकचेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहके पता लगावे आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
13: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
14: सुन्नु न
15: भन न भन,
14: चाडबाडहरू पनि नजिकै छ, बिहा पार्टीमा जाँदा पनि राम्रा गरगना छैनन्, बनाउन पर्ने
15: बनाउला नि त, फेरि सुन चाँदी जस्ता कुरा, विश्वासिलो पसल पनि हेर्नु पर्यो नि।
14: त्यसको लागि हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन नि हजुर, हाम्रै सुन्दर नगरी चार नम्बरमा शिला शिल्प स्याङ्जा कारीकोटे सुन चाँदी पसल खुलेको छ नि।
15: त्यसो भए त जाम न त, हामीसँग भएको पुरानो सुन पनि छ, त्यो सुन पनि लगेर जाउँ है। त्यही सुनसँग केही थप थाप गरी नयाँ सुन चाँदीका गरगहनाहरू बनाएर ल्याउला। बरु त्यो सुन चाँदी पसल कहाँनिर छ कुन्नि?
14: तौलिहवा रोड पश्चिम पट्टि एनसेल टावर भएको ठाउँमा।
15: हजुर, ग्राहकहरूको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै अर्डर अनुसार रेडीमेड गरगहनाहरू पनि तयार गरिनुको साथै पुराना गहनासँग नयाँ गहना पनि सट्टीपट्टी गरिन्छ। दक्षे कालीगढबाट तपाईँले खोज जस्ता आकर्षक डिजाइनका गरगहनाहरूको लागि एकपटक अवश्य हामीलाई सम्झिनुहोस्। शिला शिल्प स्याङ्जा कारीकोटी सुनचाँदी पसल, तौलिहवा रोड पश्चिमपट्टि एनसेल टावर भएकै घरमा। प्रोप्राइटर ओम गहतराज, शुभचिन्तक लोक बहादुर विक नायरी। मोबाइल 98215 90 00 95, 98575 56 095 र 98174 52311।

0: भेदभाव अन्त्य गरौँ, कुष्ठ रोग मुक्त समाज निर्माण गरौँ।
1: जनहितका लागि जारी सन्देश, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग।
2: ए रजनी, ऊ वही लम्बा डंडा है, जल्दी लेके आओ तो।
3: अरे ये मुर्गी का दाना देख समय पर आप काहे डंडा खोजा जाता?
2: एक ठू सांप है मुर्गी के फार्म लगे, ओका डंडा से डरवाई के भगावे के पड़ा, जल्दी लाओ ना।
3: अरे सांप का नहीं चला चाहिए ना, नहीं तो हमरे का डस सकत है, रह दिया जाए, बल्कि घर भीतर आए तो भगाओ खोई।
2: रजनी फार्म में हल्के मुर्गी मार दे और खाई ले, यही नाते भगावे के चाहत रहे।
3: फार्म में कीड़ा मकोड़ा मूस सांप न हले कह के तार दारी लगाए हन, सांप मुर्गी के नुकसान नहीं करी, बल्कि आपका न डसी ले, दूर रह जाए।
2: ए सही कहे, क्या करें, सांप देख के बाद डर लग जाते है। अरे सांप तो लौट के बेरवा के और चले गए।
3: हमरे घर नाई सपन से डेरावा जाता है, ओनरियो हमरन से डेरात है, यदि केहू जान अनजान में चलावत के प्रतिरक्षा करे के या आपन बचाव करे के खातिर सांप डसत है।
4: सांप से दूर रहा जाए, सांप का न चलावा जाए या न चिढ़ावा जाए, सांप आदमी से डेरात है, न चलाई के दूर रहे पर सांप न ही डसी, लेकिन उस सब खाना के खोजी में बाहर निकला समय पर घास काटत के खेलत के चलत के छुई गए पर आदमी आक्रमण करत है, सोच के प्रतिरक्षा करे के क्रम में सांप डसत है, आदमी सांप देखते भरे में मारे लागत है, ऐसन करत के सांप डस लेत है।
5: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय जानकारी के खातिर और नजदीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebite.nepal.org में देख सका जाता है।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

तनाव धनगढ़ी स्थित संसदीय दल को कार्यालय में तोड़फोड़ र तालाबंदी साथ में प्रमुख खबर संक्षेप अनलाइन में आज नेपाली रेडियो नेटवर्क में आज र जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा।